जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा इसमें क्या होता है, जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा इसमें क्या होता है।

जाओ ना कहीं, हर मोड़ पे मैंने नज़्म खड़ी कर रखी है। थक जाओ अगर और तुमको जरूरत पड़ जाए, एक नज़्म की उंगली थाम के वापस आ जाना।

0: काय ग तुम्हा बायकांच्या सोने खरेदीच्या हौशीच आता काय?
1: देशाचा सन्मान आणि आम्हाला खरं समाधान मिळणारच.
0: ते कसं?
1: आम्हाला गवसलाय अडावतकरांचा कल्पतरू प्लॅन, म्हणजे कमी दरात बुकिंग.
0: बर,
1: आज खरेदीचं समाधान आणि वर्षभरानं बिना मजुरीचा दागिनाही, GST भरणा एकदाच.
0: स्मार्ट प्लॅन.
1: स्मार्ट आहे कल्पतरू प्लॅन. अडावतकर ज्वेलर्स, अगोरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा कॉर्नर, नाशिक.
2: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी. मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी. मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा.
3: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी. समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया.

हम तो धर्म कर्म वाले हैं, समझी अजी, हम तो धर्म कर्म वाले हैं, तू है बेशरम, हम तो धर्म कर्म वाले।

0: झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है।
1: काश मैं इसे झूठ कह सकता दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
2: बास चीजें इंसान के बस में नहीं होती बेटा, भगवान के हाथ में होती हैं।